गाने थे सुनते हम ईयरफोन की, एक तार तेरे कान में एक मेरे कान में, सीने पे रख के सब सितारों को उंगली से जोड़ जोड़ के बनाती थी

0: नमस्कार, मी संजय आगरकर, तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ नगर 90.4 आवाज तुमचा.
1: सबसे अलग थी वो सबसे हंसी आंखें मेरी फिर उसकी आंखों से जमेली एक बारी दो बारी फिर निकली हंसी एक हाथ हवा विच दूजे च गिलास ते मेनू नी पता सी गिलास च की बट हौली हौली लक नुक्का के नचदे लगे सो सेक्सी.

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

0: दादू?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा मर जाओ।

कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।